थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड न

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

0: अप्राप्य योग संसिद्धिम्
1: अप्राप्य योग संसिद्धिम्
0: काम गतिम् कृष्ण गच्छति
1: काम गतिम् कृष्ण गच्छति
0: कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः
1: कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुपुणे 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: त्याग का महत्व. सामने स्वादिष्ट पकवान, चटपटे पदार्थ या लजीज व्यंजन हो तो किसके मुख में पानी नहीं आएगा. इनके भोग से आम लोग आनंद मनाते हैं, लेकिन अति भोग से रोग तथा रोग से होता है नाश. किंतु मिली हुई प्राप्ति का त्याग व्यक्ति के भाग्य को जगा देता है. थोड़ा सा त्याग भी ऊंचा मर्तबा दिलाता है. जैसे धरने से अथा अनाज पैदा होने पर किसान पूरा अन्न नहीं खाता, थोड़ा सा बचा लेता है और वो धरनी को देता है यानी बोता है और बदले में अथा अन्न पाता है. ऐसे ही किसी के त्याग से ही प्राप्ति के अथा भंडार मिलते हैं. त्याग अर्थात किसी वस्तु वैभव पदार्थ का भोग या उपयोग ना कर उन्हें दूसरे के सुख के हेतु देना, कल्याणकारी कार्य के लिए धन संपत्ति दान में दे देना, दूसरों के भलाई के लिए अपनी साधन सुविधा व आराम को लगा देना, विचार वाणी व्यवहार से बुराइयों का निर्माल्य कर अवगुणों को छोड़ देना भी सूक्ष्म त्याग है. वास्तव में त्यागी भाग्य की जननी तथा उज्जवल चरित्र निर्माण में मजबूत और कठोर नींव है. इससे ही प्रगति और विकास का पथ आरंभ होता है. विद्यार्थी जीवन की सफलता का आधार आलस और अलबेलेपन का त्याग है, जिससे परिश्रम स्फूर्ति लगन जैसे गुण पैदा होते हैं और विद्यार्थी सफलता के बाद एक सोपान चढ़ जाता है. त्याग में नुकसान कदापि नहीं, परंतु फायदा ही फायदा है. इसी प्रकार बहुत बासी सड़े गले तेज मिर्च मसालेदार मांसाहारी भोजन का त्याग उत्तम स्वास्थ्य को जन्म देता है और साथ साथ निरोगी भी बनाता है. ऐसे ही वाणी से अगर गाली गलोच अपशब्दों का त्याग करे तो सर्वप्रिय बन सकते हैं. आचरण से अवगुणों के त्याग से ही सकारात्मक उज्जवल चरित्र का निर्माण संभव है. त्याग से ही तेज की उत्पत्ति होती है और सादगी वैचारिक शुद्धता व्यवहार की पारदर्शिता और श्रेष्ठता केवल त्याग से ही मिलते हैं. लक्ष्य की पूर्णता त्याग को साथी बनाने से सहज हो जाती है. महात्मा गांधी जी ने त्याग के तप से आत्मबल पैदा किया और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें सदा के लिए उखाड़ करके फेंकी. अतः त्याग के पथ पर कदम बढ़ाइए और सोए हुए भाग्य को जगाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसु पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
3: India and Indonesia are very close and strategic partners.
4: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
3: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है, इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
5: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बाइलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बाइलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं।

0: खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6th स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।

0: नमस्कार, तुम्ही ऐकत आहात वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसू. आजच्या साहित्यिक आपल्या भेटीला या कार्यक्रमामध्ये आज आपण कविता बागेवाड यांना ऐकणार आहोत, ज्या स्वतःच्या लेखनातील कविता आपल्या समोर सादर करतायत. तर लगेचच कार्यक्रमाला सुरुवात करते. तुम्ही ऐकत राहा वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसू.
1: हॅलो एव्हरीवन, आय एम कविता बागेवाडी, बॉर्न and brought up in Belagavi, Karnataka. I did my schooling from Vanita Vidyalaya English Medium High School, completed my PUC in Science and later earned my BBA and MBA degrees. Life then took me on a new path. Today, I am a homemaker and a proud small business owner. I run Knitter's Paradise where I crochet and knit handmade creations like baby apparel, fancy bags, scarves and home decor items. Each piece I make carries a bit of my love for creativity and patience. Along with crafting, I have also stepped into writing. I write poems in Hindi, English, Kannada and Marathi, sometimes on demand and sometimes straight from the heart. I have even written short stories, poems for children, which I truly enjoy. I am also a mom to a wonderful 6-year-old boy who is my constant source of inspiration and motivation. I love spending time with my family and friends, and I feel grateful for their support through all my ups and downs. I'm really happy to be here today to share my journey, my passion, and the little joys that keep me going. Thank you. Today's poem is on Nana Nani. Nana Nani Dada Dadi Ishton Ke Ye Hai Naam Suhane Par Phir Bhi Kyun Yahan Lagte Hai Ab Hame Pure Anjane Nani Ke Nuske Dadi Ki Gutti खाओ खिलौने से भरी उनकी पुट्टी जाने कहां वह खो गए क्यों हमसे वह रूट गए नाना की शरारत दादा की मस्ती हाथी घोड़े की बनी थी सवारी थके हारे अब भूल गए सवारी बनना छोड़ दिए आज लेकिन यह मौका आया है अपने संग आपको भी खेल खिलाना है हमसे आपके लिए यह तोहफा छोटा नाती पोते के संग मनाए यह त्योहार बढ़ा दूध से मलाई है सबको प्यारी आज ग्रैंड पेरेंट्स के जश्न की है तैयारी भूल जाए हम मम्मी पापा खेल खिलाए नानी दादा ये दिन तो बहाना है छोटों से बड़ों को मिलाना है एक पीढ़ी के सीख बड़ी छोटे पीढ़ी को देनी पड़ी ग्रैंड पेरेंट्स का दिन है आया धन्यवाद कहना हमें है भाया देना हमें आशीर्वाद छोटे हैं हम मांगे यही सौगात हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे अगली कविता है पिता के लिए पिता हमारे जीवन में एक ऐसा आधार स्तंभ माना गया है कि हमारे साथ अगर पिता है तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं तो फादर्स डे के दिन मैंने ये पिता के लिए अपने लिखी हुई छोटी सी कविता है पिता पिता के प्यार की छांव में जीवन की राह सुहानी है उनकी दुलार की छांव में सजी हर एक कहानी है उनके साये में बीता हर दिन एक त्योहार है सपनों की उड़ान को मिला उनका आभार है मुश्किलों में वो ढाल बने खुशी में होठों से हंसी उनकी आंखों में देखी मैंने जीवन की सच्ची खुशी बचपन की गलियों से लेकर जवानी की राहों तक उनके संग बिताए लम्हे मैं सुकून के हर पल तक पिता आप हैं मेरा हौसला मेरी ताकत मेरा गर्व आपकी ममता और प्यार में बसा है मेरा सर्वस्व धन्यवाद कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं आपकी हर सीख और प्यार को दिल में हम बसाते हैं फादर्स डे पर यही दुआ आपका साया सदा बना रहे खुशियों की बारिश हो हर दिन आपका सजीव बना रहे हम प्यार की खोज में दौड़ते रहते हैं और जब हमें कोई प्यार करने वाला मिलता है वो किसी भी रूप में हो तो उसे हम हमेशा एक गिफ्ट एक तोहफा मानकर चलते हैं जो हमें भगवान ने दिया है उसी प्यार की सौगात पे ये कविता है शीर्षक है प्यार की सौगात हाथों में हाथ लेकर चलना सबको पसंद है पर कभी तुम आगे और मैं पीछे होकर चलने में और ही मजा है दोनों हम एक दूसरे के लिए बराबर है कभी तुम आगे बढ़कर देखो कभी मुझे आगे बढ़ने दो और ही मजा है सिक्के के दो पहलू है हम दोनों तुम्हारे बिना मैं मेरे बिना तुम रहो तो जिंदगी सजा है उतार चढ़ाव बहुत है हमारे प्यार के सफर में पर कभी तुम ऊपर चढ़ जाओ और मुझे हाथ बढ़ाकर ऊपर उठा लो तो और ही मजा है धन्यवाद So love is about accepting all the gives and takes, ups and downs, success and failures, But with you by my side, I carry a swag to say, hey problem, I don't fear you. My strength and love is always by my side. Thank you. दो इंसान उनकी बातें हमेशा उनके बीच में ही होती है। थोड़ी नोकझोंक, थोड़ा प्यार भरा संवाद हर किसी के बीच होती रहती है। ये बीच में की बातें बहुत अच्छी और सुहानी होती है। तो चलो सुनते हैं, तेरे मेरे बीच में क्या होता है। तेरे मेरे बीच में एक बड़ा सवाल, कौन खा गया वो लास्ट गोलगप्पे का माल। मैं कह रहा था मुझे ज्यादा भूख है, तू बोली देखा था बस ये झूठ है। तेरे मेरे बीच में एक और बात, तू लेके बैठी रिमोट रात 12 बजे साथ। मैं देखना चाहूँ मैच, तेरा सीरियल आए, रोना धोना और वैम्प सब दिमाग खाए। तेरे मेरे बीच में पिज्जा का बिल, मैंने दिया था लास्ट टाइम, अब तू कर चिल। पर तू कहे मुझे कुछ और याद है, बातें घुमा के तू स्मार्ट थोड़ी ज्यादा है। तेरे मेरे बीच में है सेल्फी का क्रेज, मैं सिंपल फोटो लू तू फिल्टर, तेरा फिल्टर पे क्रेज। डॉग इयर्स या कैट फेस पूछती है हर बार, अरे फोन बंद कर देख सितारे हजार। तेरे मेरे बीच में है प्यार का मैदान, तू मेरी क्वीन है मैं तेरा दीवाना इंसान। झगड़े जितने भी हो मस्ती कभी ना छोड़े, तेरे मेरे बीच में सिर्फ हंसी भरे फवारे उड़े। काश ये सबके जीवन में ऐसे ही हंसी मजाक से भरे हुए रिश्ते हो। धन्यवाद। पुढची कविता आहे एक व्यक्तीची जो आपल्या प्रेमिकेची वाट बघत आहे आणि ती कधी येईल आपल्या जीवनात आणि कधी आपल्या बरोबर राहील ह्याचे त्याला प्रश्न आहे। तर तो कस काय बोलतोय आणि कसं म्हणतोय हे ऐका। कधी येशील तू, कधी येशील तू पैंजण घातलेल्या पावलांनी, कधी रंगवशील तू चित्र आमचं तुझ्या प्रेमाच्या सुंदर रंगानी। कधी ठेवशील हात ह्या थरथरत्या हातामध्ये, कधी पाहशील डोळे या वाट पाहणाऱ्या डोळ्यातले, कधी उमगेल काळ तुझ्या हसणाऱ्या किरणांनी, कधी भरतील संध्याकाळ तुझ्या स्वयंपाकाच्या सुगंधांनी। कधी हसशील थोडस माझ्या बोलण्यातल्या गोडपणावर, कधी मिठीत घेऊन माझ्या थकलेल्या मनाला शांत करशील प्रेमानं। कधी बसू दोघे शांत फक्त एकमेकांच्या खुशीत, कधी पूर्ण होईल हे जग फक्त तुझ्या प्रेमळ संगतीत। धन्यवाद। कवी सगळ्यात जास्त प्रेम आपल्या कवितावर करतोय। तर जर कविता कधी बोलू शकली असती कि कवीला आपले भाव सांगू शकली असती तर ती काय म्हणाली असती हे ऐका। मी तुझी कविता, हृदयाच्या तळाशी साठवलेले स्वप्नांचे गाणं, तुझ्या आठवणींनी सजलं भावनांचं राणं, तुझ्या हास्यातून भेटतो सगळा सागर, तुझ्या नजरेतच आहे माझं अख्खं असमंत घर, तुझ्या डोळ्यात पाहते चांदण्यांची सर, तुझ्या स्पर्शात वाटत जगण्याचं उत्तर, तुझा आवाज जसा साजरी गोड कविता, तुझा सहवासाने उमगले मनाची मृदुवता, तुझ्या मिठीत हरवते काळाचा ठाव, तुझ्या प्रेमाने भरलंय आयुष्याचं नाव, तुला पाहून मन हरवून जात, तुझ्याशिवाय जगणं अपूर्ण वाटत, तुझ्या संगतीत हरवले काळजाचे वेदनांचे दिन, तुझ्या प्रेमात सापडले स्वप्नांचं रंगीन क्षण, तुझ्या अस्तित्वात आहेस तूच सखा, तुझ्यामुळेच सजते रोज नवी कविता। तर कविता एक मुलगी असली असती तर कविता आपल्या कवीवर प्रेम करून तिच्या काय भावना असते ते ह्या कवितेमधून मी मांडायचा प्रयत्न केले आहे। धन्यवाद। स्त्री, आम्ही जेव्हा स्त्री म्हणतो तेव्हा ती अनेक वेगवेगळे रोल्स प्रत्येकाच्या जीवनात ठेवत असते आणि स्त्रीचा इतिहास एवढा मोठा आहे की तो देवींपासून ते आतापर्यंतच्या प्रत्येक बाईंनी जगलेला एक प्रवास आम्ही आठवण करून बघितलं तर तो किती थोर आहे, केवढा मोठा प्रवास प्रत्येक स्त्री आपल्या जीवनात चालत असते याच्यावर पोवाड्याच्या रूपात लिहायचा मी प्रयत्न केले। ही कविता पोवाडा स्टाईलमध्ये आहे तर मी आज ती तुम्हाला त्या प्रकारे गाऊन दाखवते। शीर्षक आहे स्त्री।
2: ऐका हो ऐका, वीर स्त्रीची गाथा पराक्रमी इतिहास, आज गाईल ही कविता पार्वती लक्ष्मी सरस्वतीचा, घेऊन मोलाचा आशीर्वाद। पार्वती लक्ष्मी सरस्वतीचा, घेऊन मोलाचा आशीर्वाद, उभी आहे मी समोर तुमच्या, आठवीत स्त्रीचा इतिहास। जी जी रजी, जी जी रजी, जी जी रजी, अरे हे चालू।

0: दिया। उस सर्प का नाम था कालिया, मुख थे पांच और विशाल थी काया। आया था वो वृंदावन में लेकर अहंकार और बैर बेहाल। तभी अचानक खेल रुका, गेंद जा पहुंची थी यमुना में। चुप हो गए सब बालक, डर समाया मन मन में। ग्वाल बाल सब भाग खड़े हुए, बोले
1: कान्हा वापस चलो।
0: पर कान्हा मुस्काए धीरे से, बोले
1: क्यों डरते हो भला,
0: गेंद मैंने फेंकी है,
1: वापस भी मैं ही लाऊंगा।
0: इतना कहकर नटखट कान्हा यमुना में ही कूद गया। ढूंढ रहा था गेंद को कान्हा, पर मिलती कैसे उसे वो। कालिया ने छुपा रखा था और पास बुलाया कान्हा को। कान्हा मन ही मन मुस्काए, भले कालिया मैं आऊंगा, गेंद लेकर वापस जाऊंगा। कालिया क्रोधित होकर बोला,
1: अबोध बालक तू मेरा क्या कर लेगा,
0: अगर चाहिए गेंद तो युद्ध मुझसे करना होगा। जीत गया तो गेंद तेरी, हार गया तो तू मेरा भोजन होगा। कान्हा फिर मधुर हंसे और चुनौती स्वीकार की। क्षण भर में ही कूद पड़े सर्प पर जैसे बिजली प्रहार की। कालिया उगलने लगा विष, पर हुई लीला अनोखी। कान्हा ने उनके फनों पर ऐसा दिव्य नृत्य किया कि भूल गया सर्प क्रूरता, भूल गया मन की दुष्टता। कांप उठा कालिया सारा, मांगी क्षमा, बोला नहीं करूंगा ऐसी भूल, प्रभु देना मुझे क्षमादान। कृष्ण बोले, जा कालिया, पर पहले निर्मल यमुना का यह पानी, जो कभी था अमृत जैसा, वही लौटा उसे उसकी निशानी। छोड़ दे यह ब्रज भूमि और कभी न करना कोई हानि। हाथ जोड़कर सिर को झुकाकर कालिया वहां से चला गया। और एक बार कृष्ण ने अपने प्रेम का धर्म निभा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद।
2: हा होता आजचा साहित्यिक आपल्या भेटीला हा कार्यक्रम, ज्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या भाषेतल्या आणि स्वतः लिहिलेल्या कविता आणि त्यांच्याच आवाजामध्ये ऐकलेल्या आहेत। कविता बागेवाडे आपल्यासोबत होत्या, पोवाडाही आपण ऐकला। तर कसा होता आजचा कार्यक्रम जरूर कळवा। त्यासाठी नंबर आहे 9019904904 ही आहे केली वेणू ध्वनी 90.4 FM ची प्रस्तुती। नमस्कार।

गुड इवनिंग एंड नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आवर शो बी रिलैक्स। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और रेडियो होस्ट आयुष, और आपने ट्यून किया है बेलगवी का सबसे पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप यानी दोस्ती की। तो बने रहिए हमारे साथ टू एक्सप्लोर द मैजिकल बॉन्ड्स दैट शेप आवर लाइव्स। सो सिट बैक एंड रिलैक्स, करेंगे बात इस टॉपिक पर आफ्टर दिस सुपरहिट सॉन्ग्स। स्टे कनेक्टेड एंड ट्यून टू आवर चैनल वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। वेलकम बैक टू अवर शो बी रिलैक्स। आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु आयुष के साथ। टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू द ब्यूटीफुल बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। रिमेंबर, ट्रू फ्रेंड्स आर लाइक स्टार्स, जो हर बार जरूरी नहीं आपको दिखाई दे, आपको ये जरूर

पता होता है कि वो आपके साथ हमेशा है. A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the lyrics. है ना? सही कहा ना? हाँ, friendship मेरे लिए तो एक खजाने की तरह है. That goes beyond blood relation. मतलब आपके खून के रिश्ते से भी ज्यादा बढ़कर है. एक दोस्त वो होता है जो आपके आप जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता है और आपको आपकी पूरी लाइफ सपोर्ट करता है. चलिए करेंगे बात आज इसी हार्ट टचिंग टॉपिक के बारे में आफ्टर दिस हिट सॉन्ग्स. स्टे ट्यून टू वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु. हेलो दोस्तों, बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. अवर शो बी रिलैक्स इज गोइंग ऑन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉन्ड. नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की नहीं, हम आज बात कर रहे हैं दैट स्पेशल बॉन्ड, दोस्ती की. दोस्तों, दोस्तों के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे चाय की टपरी वाले दोस्त, नुक्कड़ वाले दोस्त, बैक बेंचर्स, या फिर गोवा का प्लान बनाकर कैंसिल कर देने वाले दोस्त. और उन सब दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होता है जो आप अपनी सारी बात उसे, सारी तकलीफें उससे शेयर करते हैं. वो होता है आपका हैशटैग बेस्ट फ्रेंड. आहा, आई कैन सी दैट स्माइल ऑन योर फेस. तो चलिए करेंगे बात इन्हीं दोस्तों के बारे में. और अब वक्त हो गया है कुछ दिल को छू जाने वाले गानों का. सुनते रहिए हमारा चैनल वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु. देखिए दोस्तों, बेस्ट फ्रेंड होता क्या है? बेस्ट फ्रेंड वो है जो हर जगह आपका साथ दे, चाहे वो फिर मस्ती हो, शरारत हो, या आपकी तकलीफ हो, आपके दुख हो, मींस हर जगह, जो आपकी हर चीज को अपना कहे और जो आपसे पैसे लेकर कभी ना लौटाए. जस्ट जोकिंग, पर है तो सच ही. आई नो मेनी ऑफ अस हैव शेयर्ड सो मेनी फनी और एम्बैरेसिंग मोमेंट्स विद आवर फ्रेंड्स. मैं आपको एक अपनी बेस्ट फ्रेंड स्टोरी के बारे में बताऊंगा पर इन सुपरहिट सॉन्ग्स के बाद. स्टे ट्यून टू आवर चैनल वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु. Hello and welcome back listeners. I hope you enjoyed the music break. Remember, this is your space and your radio station Venu Dhoni 90.4 KLE Kanasu. Aur hum yahan hai aapki shaam ko thoda sa aur behtar banane ke liye. Main hu RJ Ayush aur main aapko batane wala hu meri best friend story. To hua yun ki main aur mera best friend, his name is Abhigyan, aur hum dono jab school mein the tab hame ghoomne khelne ka bahut hi zyada shauk tha, chahe wo fir din bhar cycle par बाहर घूमना हो या फिर ट्यूशन बंक करके क्रिकेट खेलना हो या कहीं भी बाहर साइकिल लेकर घूमते रहना हो. तो आप जब छोटे होते हो या स्कूल में होते हो तब अगर आपके पास साइकिल हो या कोई गाड़ी हो तब आपको बड़ा अच्छा लगता है. तो वो फ्लेक्सेशन है, फ्लेक्सेशन वो हम में भी था. साइकिल होना हमारे लिए उस टाइम पर एक कह सकते हैं फ्लेक्स था, मतलब अच्छी बात थी हमारे लिए, बहुत बढ़ाई की बात थी, ऐसा हम सोचते थे उस टाइम पर. एक दिन हुआ कुछ यूं कि हमने प्लान किया. वेट, क्या प्लान किया ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से सॉन्ग के ब्रेक के बाद. सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु. हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आयुष आपके साथ. आपको बता रहा था मेरे बेस्ट फ्रेंड स्टोरीज के बारे में. तो हुआ यूं कि एक दिन हम लोगों ने प्लान किया कि ट्यूशन बंक करके जो है बाहर घूमने जाया जाए, वो शो ऑफ वाला फ्लेक्स, ये वो हम लोग भी यही सोचते थे. तो हम लोगों ने इस बार साइकिल की बजाय सोचा कि चलो इस बार गाड़ी लेकर चलते हैं. अब गाड़ी हमारे पास तो थी नहीं, गाड़ी थी हमारे दोस्त के एक पिताजी के पास. तो हमने क्या किया, हमने हमारे दोस्त को बहला फुसला कर कहा, अरे आपके पिताजी से जो है गाड़ी लेकर और हम जाते हैं घूमने. अब दोपहर का टाइम था. भारत में क्या होता है, हर दिन फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टरनून होता है ब्रेक टाइम, तो सोते हैं. तो हमारे दोस्त के पिताजी भी, उनको उन्हें भी दोपहर में सोने की आदत थी. और हम लोगों ने क्या किया, जब वो सो रहे थे तब धीरे से हम लोगों ने उनके पॉकेट से उनकी गाड़ी की चाबी निकाली. और बस फिर क्या था, फिर दोपहर में हम गाड़ी लेकर निकल गए और थोड़ी ही दूर हम पहुंचे कि अगले ही चौराहे पर हमें पुलिस ने रोक दिया और मांगा हमसे हमारा लाइसेंस, जो कि हमारे पास था नहीं. और हम दोनों वहीं एकदम से डर गए. अब करे तो क्या करे, जैसे तैसे हिम्मत करके दोस्त के डैडी को फोन किया गया. उसके बाद जो हुआ वो तो आप सोच ही सकते हैं. मतलब मैं क्या बताऊं, मार पड़ना एक अलग बात होती है और जमकर मार पड़ना एक अलग बात होती है. और फिर हमारा बाहर निकलना ही बंद हो गया या बैन हो गया गया. तो ये थी मेरी वन ऑफ द फनीस्ट स्टोरी. आपको ये रिपीट नहीं करना है, ये सिर्फ स्टोरी थी आपको हंसाने के लिए. और हम आपसे मिलेंगे इन जबरदस्त गानों के बाद. सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु.
स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में, और मैं आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर। दोस्त होने के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, दोस्त ही एक ऐसा बॉन्ड है जो आपको बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ऐसे दोस्त बनाए जो आपके दिल तक जाए और आपको बुरी आदतों से बचाए। मुझे दोस्ती पर एक बहुत ही अच्छा शेर याद आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ कि दोस्ती बुरी हो तो उसे होने मत दो, दोस्ती बुरी हो तो उसे होने मत दो, और अगर दोस्त हो सबसे प्यारा तो उसे चैन से सोने मत दो। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपने ट्यून कर लिया है वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू, एंड वी आर टॉकिंग ऑन द ब्यूटीफुल एंड हार्ट टचिंग टॉपिक फ्रेंडशिप। तो मैं आज इस कन्वर्सेशन के बारे में आपसे यही कहूंगा कि अगर आप भी ऐसे पक्के दोस्त हैं तो उन्हें हमेशा थाम कर रखिए, हमेशा उन्हें संभाल कर रखिए। चेरिश देम, होल्ड देम क्लोज फॉर द वन दे आर द एंकर्स दैट कीप अस ग्राउंडेड एंड द विंग्स दैट हेल्प्स अस सोर। और हमेशा याद रखिए, दोस्ती की कोई भी सीमा नहीं होती, ना कोई वक्त देखा जाता है ना कोई डिस्टेंस देखी जाती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड गिगल्स। हम आपसे लेते हैं अलविदा और मिलेंगे जल्द ही हमारे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। कीप लिसनिंग टू वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू RJ आयुष के साथ।

वेलकम बैक टू अवर शो बी रिलैक्स। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु आयुष के साथ। टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू द ब्यूटीफुल बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। रिमेम्बर, ट्रू फ्रेंड्स आर लाइक स्टार्स, जो हर बार जरूरी नहीं आपको दिखाई दे, आपको ये जरूर पता होता है कि वो आपके साथ हमेशा है। अ फ्रेंड इज समवन हु नोज द सॉन्ग इन योर हार्ट एंड कैन सिंग इट बैक टू यू व्हेन यू हैव फॉरगॉटन द लिरिक्स। है ना, सही गाना। हाँ, फ्रेंडशिप मेरे लिए तो एक खजाने की तरह है, दैट गोज बियॉन्ड ब्लड रिलेशन, मतलब आपके खून के रिश्ते से भी ज्यादा बढ़कर है। एक दोस्त वो होता है जो आपके आप जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता है और आपको आपकी पूरी लाइफ सपोर्ट करता है। चलिए करेंगे बात आज इसी हार्ट टचिंग टॉपिक के बारे में आफ्टर दिस हिट सॉन्ग्स। स्टे ट्यून्ड टू वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

दोस्तों बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। Our show Be Relax is going on and we are talking about the most beautiful bond। नहीं, girlfriend या boyfriend की नहीं, हम आज बात कर रहे हैं that special bond, दोस्ती की। दोस्तों के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे चाय की टपरी वाले दोस्त, नुक्कड़ वाले दोस्त, बैक बेंचर्स, या फिर गोवा का प्लान बनाकर कैंसिल कर देने वाले दोस्त। और उन सब दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होता है जो आप अपनी सारी बात उसे, सारी तकलीफें उससे शेयर करते हैं, वो होता है आपका हैशटैग बेस्ट फ्रेंड। आई कैन सी दैट स्माइल ऑन योर फेस। तो चलिए करेंगे बात इन्हीं दोस्तों के बारे में, और अब वक्त हो गया है कुछ दिल को छू जाने वाले गानों का। सुनते रहिए हमारा चैनल वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। परम परम पम पम पम परम पम परम परम पम।

देखिए दोस्तों, बेस्ट फ्रेंड होता क्या है? बेस्ट फ्रेंड वो है जो हर जगह आपका साथ दे, चाहे वो फिर मस्ती हो, शरारत हो, या आपकी तकलीफ हो, आपके दुख हो, मींस हर जगह, जो आपकी हर चीज को अपना कहे और जो आपसे पैसे लेकर कभी ना लौटाए। जस्ट जोकिंग, पर है तो सच्ची। आई नो मेनी ऑफ अस हैव शेयर्ड सो मेनी फनी और एम्बैरेसिंग मोमेंट्स विद आवर फ्रेंड्स। मैं आपको एक अपनी बेस्ट फ्रेंड स्टोरी के बारे में बताऊंगा पर इन सुपरहिट सॉन्ग्स के बाद। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

Hello and welcome back, listeners. I hope you enjoyed the music break. Remember, this is your space and your radio station Venu Dhoni 90.4 KLE Kanasu. और हम यहाँ हैं आपकी शाम को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए. मैं हूँ आरजे आयुष और मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड स्टोरी. तो हुआ यूँ कि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड हिज नेम इज अभिज्ञान और हम दोनों जब स्कूल में थे तब हमें घूमने खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था. चाहे वो फिर दिन भर साइकिल पर बाहर घूमना हो या फिर ट्यूशन बंक करके क्रिकेट खेलना हो या कहीं भी बाहर साइकिल लेकर घूमते रहना हो. तो आप जब छोटे होते हो या स्कूल में होते हो तब अगर आपके पास साइकिल हो या कोई गाड़ी हो तब आपको बड़ा अच्छा लगता है. तो वो फ्लेक्सेशन है, फ्लेक्सेशन वो हम में भी था. साइकिल होना हमारे लिए उस टाइम पर एक कह सकते हैं फ्लेक्स था, मतलब अच्छी बात थी हमारे लिए, बहुत बढ़ाई की बात थी, ऐसा हम सोचते थे उस टाइम पर. एक दिन हुआ कुछ यूं कि हमने प्लान किया. वेट, क्या प्लान किया ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से सॉन्ग के ब्रेक के बाद. सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू.

हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आयुष आपके साथ। आपको बता रहा था मेरे बेस्ट फ्रेंड स्टोरीज के बारे में। तो हुआ यूं कि एक दिन हम लोगों ने प्लान किया कि ट्यूशन बंक करके जो है बाहर घूमने जाया जाए, वो शो ऑफ वाला फ्लेक्स, ये वो हम लोग भी यही सोचते थे। तो हम लोगों ने इस बार साइकिल की बजाय सोचा कि चलो इस बार गाड़ी लेकर चलते हैं। अब गाड़ी हमारे पास तो थी नहीं, गाड़ी थी हमारे दोस्त के एक पिताजी के पास। तो हमने क्या किया, हमने हमारे दोस्त को बहला फुसला कर कहा, अरे आपके पिताजी से जो है गाड़ी लेकर और हम जाते हैं घूमने। अब दोपहर का टाइम था। भारत में क्या होता है, हर दिन फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टरनून होता है ब्रेक टाइम, तो सोते हैं। तो हमारे दोस्त के पिताजी भी, उन्हें भी दोपहर में सोने की आदत थी। और हम लोगों ने क्या किया, जब वो सो रहे थे तब धीरे से हम लोगों ने उनके पॉकेट से उनकी गाड़ी की चाबी निकाली। और बस फिर क्या था, फिर दोपहर में हम गाड़ी लेकर निकल गए और थोड़ी ही दूर हम पहुंचे कि अगले ही चौराहे पर हमें पुलिस ने रोक दिया और मांगा हमसे हमारा लाइसेंस, जो कि हमारे पास था नहीं। और हम दोनों वहीं एकदम से डर गए। अब करे तो क्या करे, जैसे तैसे हिम्मत करके दोस्त के डैडी को फोन किया गया। उसके बाद जो हुआ वो तो आप सोच ही सकते हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, मार पड़ना एक अलग बात होती है और जमकर मार पड़ना एक अलग बात होती है। और फिर हमारा बाहर निकलना ही बंद हो गया या बैन हो गया गया। तो ये थी मेरी वन ऑफ द फनीस्ट स्टोरी। आपको ये रिपीट नहीं करना है, ये सिर्फ स्टोरी थी आपको हंसाने के लिए। और हम आपसे मिलेंगे इन जबरदस्त गानों के बाद। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में, और मैं आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर। दोस्त होने के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, दोस्त ही एक ऐसा बॉन्ड है जो आपको बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके दिल तक जाए और आपको बुरी आदतों से बचाए। मुझे दोस्ती पर एक बहुत ही अच्छा शेर याद आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ कि दोस्ती बुरी हो तो उसे होने मत दो। दोस्ती बुरी हो तो उसे होने मत दो, और अगर दोस्त हो सबसे प्यारा तो उसे चैन से सोने मत दो। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE हमारे साथ।

नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपने ट्यून कर लिया है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू एंड वी आर टॉकिंग ऑन द ब्यूटीफुल एंड हार्ट टचिंग टॉपिक फ्रेंडशिप। तो मैं आज इस कन्वर्सेशन के बारे में आपसे यही कहूंगा कि अगर आप भी ऐसे पक्के दोस्त हैं तो उन्हें हमेशा थाम कर रखिए, हमेशा उन्हें संभाल कर रखिए। चेरिश देम, होल्ड देम क्लोज फॉर द वन दे आर द एंकर्स दैट कीप अस ग्राउंडेड एंड द विंग्स दैट हेल्प अस सोर। और हमेशा याद रखिए, दोस्ती की कोई भी सीमा नहीं होती, ना कोई वक्त देखा जाता है, ना कोई डिस्टेंस देखी जाती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड गिगल्स। हम आपसे लेते हैं अलविदा और मिलेंगे जल्द ही हमारे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। कीप लिसनिंग टू वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू RJ आयुष के साथ।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, पिछली बार हम यादों की बारात में जिंदगी पे बातें कर रहे थे। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल शो हो रहा था, पर क्या करे, जिंदगी ये टॉपिक ही इतना बड़ा है और इतना संजीदा है कि थोड़ी बहुत फिलोसॉफी तो निकल ही आती है। तो इसी टॉपिक को, इसी थीम को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस थीम पे हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं। तो बचे हुए गाने आज के शो में मैंने इंक्लूड किए हैं। शुरू करते हैं आज का शो। आज का पहला गाना है हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जाबाज फिल्म का ये गाना है जो 1986 में रिलीज हुई थी। इसे गाया है मनहर उदास ने और साधना सरगम ने। इस फिल्म को फिल्माया गया था श्रीदेवी और फिरोज खान के ऊपर। म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और लिखा है इंदिवर ने। दोस्तों, जिंदगी में कभी कुछ ख्वाहिशें पूरी होती है तो कभी कुछ पूरी हो नहीं पाती। जो मिलता है उसकी खुशी मनाइए और जो नहीं मिलता उसे भूल जाइए, तभी जिंदगी आसान होती है। सुनते हैं ये पहला खूबसूरत सा गाना। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

वेलकम बैक दोस्तों, यादों की बारात में मैं आरजे स्वरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के शो में भी हम जिंदगी के ऊपर कुछ खूबसूरत से गाने सुन रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में जब फैमिली का साथ हो, परिवार का साथ हो, तो खुशियाँ, मजा, परेशानियाँ, प्यार और दुख सब कुछ ही दुगना हो जाता है। जितना प्यार मिलता है उतनी परेशानियाँ भी मिलती है। ऐसा ही कुछ हम देखते हैं इस फिल्म में जिसका नाम है सत्ते पे सत्ता। 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें हमने देखा था कि अमिताभ बच्चन जी ने सबसे बड़े भाई का किरदार निभाया था और उनको और 6 छोटे भाई थे, यानी सब कुल मिला के 7 भाइयों की ये कहानी है। अमिताभ जी के साथ लीड रोल में हमने हेमा मालिनी को देखा था। इस फिल्म का ही गाना है जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल सबको सुनाएंगे। ये गाना गाया है किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन यानी आरडी बर्मन, सपन चक्रवर्ती और भूपेंद्र सिंह ने। इसे म्यूजिक दिया है एसडी बर्मन साहब ने। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

0: दोस्तों, जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं है। क्या सच है, क्या दिखावा, क्या हकीकत, क्या झूठ, कुछ पता नहीं चलता। पर पता करके भी क्या मिल जाएगा। जिंदगी जैसे आती है वैसे ही उसका सामना करने में मजा है दोस्तों। अगला गाना है जिंदगी ख्वाब है, जागते रहो। इस फिल्म का ये गाना है जो 1956 में रिलीज हुई थी। इसे म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने और गाया है मुकेश साहब ने। इस फिल्म में राज कपूर साहब और नरगिस ने लीड रोल निभाए थे। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु।
1: नारंगी को नारंगी कहें, बने दूध को खोया,

0: सच है क्या, सब सच है।
1: यादों की बारात, आप सुन रहे हैं 90.4 FM वेणु ध्वनि KLE कनसूपे, और मैं हूँ आपकी हम सफर आरजे स्वरा। जिंदगी के उतार चढ़ाव कभी हमें हैरान कर देते हैं तो कभी परेशान कर देते हैं। यूँ तो जिंदगी बड़ी मासूम है, पर कभी कभी कुछ ऐसी करवटें लेती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिंदगी को जिया कैसे जाए। अगला गाना है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं। मासूम इस फिल्म का ये गाना है जो 1983 में रिलीज हुई थी। इसे गाया है अनूप घोषाल ने, म्यूजिक दिया है आरडी बर्मन ने और लिखा है गुलजार साहब ने। दोस्तों, कहते हैं अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये अपने हाथ में होता है। जब ऐसा लगता है कि जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में है, तभी जिंदगी हमारे हाथ से डोर छीन के अपने हाथ में ले लेती है।

यादों की बारात का खूबसूरत सा हमारा सफर चल रहा है दोस्तों, और मैं हूँ आपकी हमसफर आरजे स्वरा। कहते हैं अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये अपने ही हाथ में होता है। जब ऐसा लगता है कि जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में है, तभी जिंदगी हमारे हाथ से डोर छीन लेती है और हमें उसके इशारों पे नचाती है। अगला गाना है ये मेरी जिंदगी, जिद्दी फिल्म का ये गाना है जो 1964 में रिलीज हुई थी। म्यूजिक दिया है एसटी बर्मन ने, गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी और आशा पारेख ने काम किया था। उनके साथ साथ महमूद और शुभा खोटे भी हमको इस फिल्म में दिखाई दिए थे। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। आप लौट के आइए 90.4 FM वेणुध्वनि KLE कनसू पे।

ये कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

आरजे स्वरा के साथ आप यादों की बारात का खूबसूरत सफर एंजॉय कर रहे हैं। आज की हमारी थीम है जिंदगी। जिंदगी में कोई मनचाहा साथी मिल जाए तो जीने का मजा ही कुछ और होता है। हर एक के दिल में एक आशा होती है कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। यही गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो है फिल्म कुर्बानी से। 1980 की फिल्म का ये गाना है, जिसे गाया है नजिया हुसैन ने, म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और लिखा है बिद्दू ने।

दोस्तों, जिंदगी में कभी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है और उनका शिकवा जिंदगी भर चुभता रहता है। इसीलिए कहते हैं, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जिंदगी में हमारे चहेते लोगों को हमको पकड़ के रखना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर शिकवा रह जाता है। अगला गाना है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आंधी फिल्म का ये गाना है जो 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सुचित्रा सेन और संजीव कुमार ने काम किया था। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार ने। म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने और लिखा है गुलजार साहब ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पुणे 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसोबे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पुणे 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।